ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। जापानी करेंसी जुमे को टोक्यो में डॉलर के मुकाबले में तकरीबन एक माह की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। एक मरहले पर इसकी कीमत 155 येन फी डॉलर की सतह पर चली गई। येन ने बुध से शुरू होने वाली अपनी पेशकदमी को आगे बढ़ाया, जब इस कदर में 3 येन फी डॉलर का इजाफा हुआ था। इसकी वजह ये कयास आराइयां थीं कि बैंक ऑफ जापान सूद की शरह में ज्यादा तेजी से इजाफा करेगा। येन की कदर में नए इजाफे के बावजूद मार्केट के जराए का कहना है कि गैर मुल्की करेंसी के ताजरों ने मुहतात रवैया अपना रखा है, क्योंकि अमरीका में मुलाजमतों के हवाले से रिपोर्ट जुमे को जारी होने वाली है। मुलाजमतों के आदाद शुमार अमरीकी मॉनिटरी पॉलिसी और शरह सूद का तायुन करने में अहम पैमाना हैं। एनएचके को इल्म हुआ है कि अगस्त 1945 के एटमी हमलों के फौरन बाद हिरोशिमा और नागासाकी के मनाजिर दिखाने वाली एक दस्तावेजी फिल्म में माजी के रिकॉर्ड्स की निस्बत ज्यादा वसी मंजरकशी करने वाले मनाजिर मौजूद हैं। दस्तावेजी फिल्म हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम के असरात में सितंबर 1945 और जनवरी 1946 के दौरान इन शहरों और एटमी हमले में जिंदा बच जाने वाले लोगों की हालत को रिकॉर्ड किया गया था। इस फिल्म को अपने पास महफूज रखने वाली हिरोशिमा सिटी सिनेमेटोग्राफिक एंड ऑडियो विजुअल लाइब्रेरी ने जदीद तरीन आलात की मदद से इसका तफसीली मुआयना करते हुए ये नायाब दरियाफ्त की है। अमले ने दौरान मुआयना देखा कि फिल्म के मुतादित मनाजिर में माजी की निस्बत ज्यादा वसी उमूदी फ्रेम मौजूद है। एक मंजर में हिरोशिमा के एक जिंदा बचाने वाले शख्स का तस्करा है, जो महज अपनी चप्पलों की वजह से पांव की उंगलियों को झुलसने से बचाने में कामयाब रहा था। पहले जारी की गई फुटेज में पांव की ये उंगलियां दिखाई नहीं देती थीं, लेकिन अब इस वसीतर फ्रेम में इन्हें वाजह तौर पर देखा जा सकता है। इसी तरह नागासाकी की फुटेज में सामने आने वाले वसी फ्रेम्स उन बच्चों के चेहरों के तासुरात को नुमाया करते हैं जो वहां जख्मियों का इलाज होते हुए देख रहे थे। इसके साथ ही इस फुटेज में साबिका शिरोयामा नेशनल स्कूल के अंदरूनी हिस्से का भी एक बड़ा मंजर दिखाई देता है। इस स्कूल की इमारत को एटमी हमले की एक तारीखी यादगार के तौर पर जापान में कौमी तारीखी मकाम का दर्जा हासिल है। ये तारीखी दस्तावेजी फिल्म अक्टूबर में हिरोशिमा सिटी में एक खसूसी नुमाइश के दौरान दिखाई जाने वाली है। इग नोबेल प्राइज के नए फातहीन का ऐलान जुमेरात को स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख में मुनक्किदा एक तकरीब में कर दिया गया। ये इनाम ऐसी तहकीक के एतराफ में दिया जाता है जो पहले लोगों को हंसाए फिर सोचने पर मजबूर करे। अनजहानी जापानी मुहक्किक उन्नो तोकुजी ने 1977 में की गई अपनी तहकीक नाक कैसे साफ की जाए नाक साफ करने का एक एरोडायनामिक मुतालिया पर यह इनाम जीता। वो शुमाली जापान के होक्काइडो खित्ते में वाक़ आसाहिकावा मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमेरिटस थे। उन्होंने रफ्तार हजम और वक्त जैसे मुख्तलिफ डेटा का मुतालिया किया। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि एक वक्त में एक नतने को साफ करना ज्यादा मुअसर है, क्योंकि निकलने वाली हवा का दबाव ज्यादा और मजबूत होता है। उन्होंने बताया कि कानों पर दबाव में तब्दीली से आमतौर पर कान में शदीद इन्फेक्शन पैदा नहीं होता। उन्होंने ये नतीजा अख्ज़ किया कि बड़ा और लंबा झटका देकर नाक साफ करना सांस की बीमारियों से बचने के लिए ज्यादा मुअसर है। वो जापान से ये एजाज हासिल करने वाले बहुत से दीगर लोगों की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। जापानी मुहक्किकीन गुज़िश्ता 20 सालों से मुसलसल ये इनाम जीत रहे हैं। 10 शोबों के लिए इनाम याफ्तगान का ऐलान किया गया। दूसरे फातहीन ने सांप कब काटता है और प्यारे मगर शैतानी दोस्त जैसे मौजूद का मुतालिया किया। और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। बारिश वाला मौसम जापान के बेशतर हिस्सों को अपनी लपेट में लिए हुए है, जिसके दौरान पीर के रोज तक मुल्क के कई हिस्सों में शदीद बारिश का इम्कान है। और नेपाल में रेस्क्यू टीमें चीन के साथ सरहदी इलाके में आने वाले शदीद अचानक सैलाब के एक हफ्ते से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी जिंदा बच जाने वालों को तलाश करने के लिए कोशां हैं। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए nhk.jp/urdu।